0: अले फुक्को भया जटा सिडल्ला
1: अ सिरी ढुंकल
0: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनो हे टेलिकम याज्या खुथि वना ब्लक याना वेदन
0: अले बेंकेले
1: बुइंके
0: खटया
1: अनछा या मालले
0: ओला या माहुने ठौगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक यातना जानकारी बियादिस अले ठौगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
1: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्दे
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
3: सूर्य ज्योति सही प्लान यो प्लानले प्रिमियम तिरेको छ गुणासम्मको कभरेज दिन्छ अनि प्रिमियम तिर्ने अवधि पश्चात
4: को लागि

जल विद्युत आयोजना यो कै क्षति जुगु ड वो जुगु हुने ना चाहिँ नेपाल यता आ जल विद्युत सो पचा मगा फो आ विद्युत मगाएको हुने ना छिथा लोड सेडिङ जुइ फो अवस्था यता कया चाहिँ ठो पार पाखे आ निरन्तर रूपमा चाहिँ बिजुली छिथा उपलब्ध याकिएको जुला टा चाहिँ नापा छे नेपाल पाखे चाहिँ निर्यात जुवा चौ खर्च चाहिँ आ छो पचा चाहिँ आ आयात या ट्याङ्गो ख ठो आयात याना चाहिँ आ लिप्टे चाहिँ छिसा हान जल विद्युत सक्ता देर हुँदा नेपाल पाखे हान निर्यात कण्ठहार लिट बी द अमेरिका सकारात्मक रहन भुख वगुडोला कण्ठहार अरे खुइड न्य नेपाल फुयाङको टलेजो भवानी द या कण्ठहार लिट बी द अमेरिका सकारात्मक लिस वगु डुर्गा चाहिँ थन भुख वगुडो अमेरिका या सिकागो चङ्गो आर्ट इन्स्टिच्युट अफ सिकागोले विशेष महत्व बिहा प्रदर्शन तयार टाउको ठुको टिसा लिट हेगु नीति नेपाल टाई न्य निसे कुट याना चङ्गु डो पुरातत्व विभाग न्यार न्य निसे इन्स्टिच्युट या पत्राचार याना चङ्गु खसा सकारात्मक लिस मया चङ्गु ख लिपाङ्गो पत्राचार्य धासा इन्स्टिच्युट तिसा लिट बी त सकारात्मक लिस ब्युगु खर्गा ठाकुर पुरातत्व विभागीय पुरातत्व तथा क्युरियो जाँच पास शाखाया अधिकृत सरिता सुवेदी टलेजुया तिसा लिट बी त थपी सकारात्मक जुगो भावना इमेल आर्ट इन्स्टिच्युट अफ सिकागो पाखे प्राप्त जुगुरका तयारिएको ख तसै छिन फोन नदिफे आ फोन चाहिँ थन जुगु ख प्राविधिक पासा फोन ने छु समस्या भया छन् तयारी रो ओ ज्या चाहिँ झिगु फोन ल्या भी त ठन पल्ख छपा चाहिँ मेन यने ला मेन हुँगा चाहिँ जे फोन ठन आसिना अले छिट झिगु फोन ल्या भिएर छि फोन ठो मेन हुँगा चाहिँ छि फोन ना दिफे 9843 01 264 9843 01 264 छ चाहिँ फोन यना दिँदा इनाप्ना छ ठगो नुग खटे हुने दिँदा चाहिँ छपा चाहिँ ठन मेन यना दिसन।

0: आजै डाउनलोड गर्नुहोस् नेपा एप।
1: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे यान जग बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग फलो यान दिस सुन लिंक च्याकेन ओछुकिया नीति ख सुना छया हगु ख वो गन उनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक यान दिस बाम लागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुन खे थया त शंखा जुल धासा बैंक या त खबर यान दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश।
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
3: हाम्रो
4: बजार क्षेत्रमा फोहर जथाभावी नफालौ, डस्टबिनमा फालौ, सभ्य नागरिकको परिचय दियौ। हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर
5: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका।
6: पोखर भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा FM 106.6।

जोजलपा जिकल्पना महर्जन सलमाठा आरोही नाप संचार कर्मी नेवास नेवा एफएम 106.6 निछिचाची 24 घण्टा प्रसारण जुया चंगुदु www.newafm.com.np लगन याना नाप हाम्रो पात्र वा टाइम्स एप्स पाखी मोबाइल विषय गुगुन थासी नेवा एफएम 106.6 नेनाडी फै

0: नब्बेमा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स।

0: जीवनको लागि।
1: अले फुक्को भया जटा सिडल्ला
2: अ सिडी ढुंकल
1: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याज्या खुठी वना ब्लक याना वेट न
1: अले बैंकेले
2: बैंके
1: खटया
2: अनछा या मालले
1: ओला या माहुने ठौगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक याता न जानकारी बियादिस अले ठौगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
2: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी छन्
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
4: मठ मन्दिर पाटी पौवाहरू हाम्रो पहिचान र पुर्खाका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। स्वच्छ सफा राखी यसको जगेर्ना गरौं। कीर्तिपुर नगरपालिका 2 वटा कार्यालय देवढोका।

0: जोजोलोपा थुगु इले छिकपिन्छन् याना तना दिगुदु नेवा एफएम सचुव खुफुते खु मेगा हाजा नेना दिस निंका दिस नेवा ज्यागु गर्व याना दिस
1: पुनर्जागरण काल्य न संचखा टक्कले समर्पित म सांस्कृतिक सेना जुदुकाजी रंजित थोछपुमे पासपिंत देछाना दिगुदु र पासपिसा सहर्ष थोइत था था उनु गाय साबिया जीवंत यागुदु न्यो न्यो इला सातु गुताला मजिला देने मजिला दा बितकी थुगुई फुत छिपीना ए उपेक्षित जाति दा ए उपेक्षित

0: बन बिल धासा खाजा दिबो वयो
1: से बा छिसा लटरी भएन डियागुला
2: मधु छाठे मुइचा लटरी लागुला बान लागु ए खनी
1: परे महिनागु लटरी गठिना लाइले बा छुसागु मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गनन होला धासा विश्वास याने डिमटे फोन ए वसा थगु विवरण गबले बिमटे सुन वित्तीय संस्था छिगु पासवर्ड पिन आदि गुब्ले काई मको ठोला बैंक हेन काई मको
3: सतर्क जदिस थगी पाके बचे जदिस
0: सिद्धार्थ बैंक पाके जनहित जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
5: नेवा लहना नेपाले या दिशा ख नेवा जातीय गौरव
6: नेवा संस्कृति महसिकेट नेवा नशा पेसाया सत्ता सभा क्याट
5: नेवा लहना रेस्टुरेन्ट हा बहा किपु
6: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
5: नेवा लहना
6: छक अवश्य दुसाजासानी
7: जोजो लपा जी बैकुण्ठा महेन्द्र म्याराथन कासा झी नेवा टेगो छबु जकस नेवा एफएम 106.6 नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या न्यो बोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेंका दिस नेना छोना जीव सीता सुबह

0: For world-class luxury.
1: अले फुक्क भयो जाटा सेडर ला
2: सिरी ढुङ्क ल
1: सँग पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यान ला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम या ज्या खुठी वना ब्लक यान वेट न
1: अले बैंकेले
2: बुइंके
1: खट या
2: अनछा या मालले
1: ओला या माहुने ठाउको मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगो बैंक यातन जानकारी बियादिस अले ठाउको बैंक खाता या जानकारी मेपिनीको लाटे ठेनीको पाखे बचे जियादिस
2: सतर्क जियादिस ठगी पाखे बचे जियादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: नेपाल भाषा एकाडेमी पाखे अनक मिडिया प्रारिया नेवया नेवा एफएम 106.5 निनादिस 24 घण्टा प्रसारण दुया जंगुटु नापं newafm.com.np लग याना दिस हाम्रो पात्र पाखे इन्टरनेट माध्यम विश्व या गुगुन थासे निनादिफ
1: जी पाम जसे संकिपा चोमी सेनानी सुबह

0: सामाजिक सञ्जालले बालकको भुजे याना जग बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन्य वो छुकीय नीति ख सुना छया हगु ख वो गन वनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थ या त शंका जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
2: धार्मिक व सांस्कृतिक सम्पदा नाप सार्वजनिक स्थल त सिचु पिचु याना किपुया पर्यटन प्रबन्धन अभियानले सकसिन ग्वालियर दिश किपुर नगरपालिका दुईवटा जाकु देवढोका किपु
3: जोजो लपा जी मदन कृष्ण श्रेष्ठ अनक मिडिया निगोया नेवा FM 106.6 मेगाहर्ज रेडियो जिनो निना चिनो निन्दिसा सुपा

0: क्या विवरण बेला धासा खाता देव वही हो
1: से बा सीसा लटरी भए न डियागुला
2: मधु छाठे मुइचा लटरी लागुला बा लागु ए खनी
1: परे महिना गु लटरी गठिना लाइले बा छुदागु मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गन न होला धासा विश्वास याने डिमटे फोन ए वसा थगु विवरण गबले बिमटे सुन बिटिएस।

ठिक थै गुपी दया दया लुवाई गुपी पाला पाला लुवाई तर जिगु छेन बाफुल गजब निक्ति निक्ति खेन बाफुजिया छुनी तर उमफल मुखु एर्गा मामुली ना मुखु जिगु छेन थे छिक्लियु छेन जुजे।

0: आजै डाउनलोड गर्नुहोस् नेपा एप।
1: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे याना जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन्य वो छुकीय नीति ख सुना छया हगु ख वो गन वनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बाम लागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थया त शंखा जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश।
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
3: सिक्क सिक्क निलमापी तस्क तस्क नाच्न ल्युपी मदन कृष्ण लागि सदा सदा हनिभपी अलि मदन कृष्ण दुःख सुख खन झ्याउले कनि भपी दाजु किजा ततके कक काकी थोम्बा थोमा बाजे बजे आजु अजी पासपी पासबापी ओ पासमापी सक्क सिद्धमा भाग्याती भाग्य भने जीव मदन।

सकल शगु मंका स नेवा स नेवा एफएम सच्छो खुप्टी खुब मेगा हर्जा ज्याजले लस्कु सेना जना थौ नेपाल सम्बत छिन छ सवो पी खुद हियोङ लागा चतुर्दशी ध्याबले मंगल चतुर्दशी यो दिन ख थौ थौ या दिन सकल श्याम भिजीमा धासे प्राविधिक कठन ग्वाल नान्दी युनिक साके नाप ज्याजन हाका मेजी कमला ठौया लोकौहागु मेज्याजो नेनीगु नीति वापटिक छिन्ता इन्छिन छटाई टक ठिथि मेहलामे पिनगुसले याई खुसी चङ्गु लोकौहागु मेनिङ्गेगु नीति छगौ टक नचना ज्याजो नेना ज्याजो या सवाके दिधैगु भल सकासे ज्याजो या दक्ली नपाङ्गु मे छपो देछ्यातेना थौ गणेश चतुर्दशी चतुर्दशी मङ्गल चौथी धाइगु दिया त कया थौ डक्ली नपाङ्गुमी सुरजवीर बज्राचार्य या चोस्या अलिवे कयासले बुन्दिया लस्त्या ठेका टगु ठुगु लोकौहागुमी देशना चना ठुगुमी लेचनादी जुगल डङ्गल नेनादिस थौ या ज्याजो या डक्ली नपाङ्गुमी लेटाजी अति छङ्गु।

0: නෙවා ටෙලිවිසන්
1: फोन गब्ले बी मचे सुन वित्तीय संस्था पासवर्ड पिन आदि गुब्ले।

बच हाकागु डिपालिपा ज्याजुले हाक्नछक लस्कु सेना जना नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिद्या नेभया भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज अलि ठुगुइले छिन नेना जना डिगुडु लोकम हागु मि ठुगु ज्याज वा पट्टिक छिनी टान छि छटा इटक नेना डि फैरासा ठुगु ज्याज स चोमे लेचिना मे पिंगु नागया वे कपिन त हपान ब्या व याचना गुजुल अले या कसले ठिठी मेहला मे पिंगु सले लोकम हागु मेन्टेनिंग का याचना गुडु चन्देश्वर महर्जन या चोस्या बाजाङ गोसा गोयाडी हरिशरण स्यामी सतीश महर्जन ओ निशा डेसा ठुगु न्याय पुगु लोकौ हागु जोमे डेछना चुना।

जोजलपा जिम्यालामी पूर्णमान महर्जन छिसा नेना चना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिसा नेङ्का जिसा नेवा जुयागु गर्व याना जिसा।

0: नेवान नहना रेस्टुरेंट कहाँ बहा किपु
1: निवास सभ्यताया जीवन्त गो खुल्ला संग्रहालय
0: नेवान नहना
1: छक अवश्य रुसाजा सानी
2: जोजो लपा जी बैकुण्ठ महेन्द्र म्याराथनका साथ झी नेवा टेगो छगु जकस नेवा एफएम 106.6 नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या न्यौ बोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेङ्का दिस नेना छोना जीव सित शुभ्या

पाखे अनत मिडिया प्रारिया नेवया नेवा एफएम 106.5 निनाडीस 24 घण्टा प्रसारण दुया जंगुडु नापं नेवा एफएम .com.np लग याना दिस हाम्रो पात्र पाखे इन्टरनेट माध्यम विश्वया गुगुन थासे निनाडी जी पाम जसे संकिपा चोमी सेनामी शुभ

0: आजै डाउनलोड गर्नुहोस् नेपा एप।
1: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझै याना जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन वो छुकीय नीति ख सुना छयागु ख वो गन उनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थया त शंका जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश।
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
3: जोजो लक्वा जी मदन कृष्ण श्रेष्ठ अनक मिडिया निगोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो जिनो निना सिना निन्दिसा सुपा

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति नेवा नशा तो सया सत्ता सभा क्या
0: नेवा लहना रेस्टोरेंट खा बहा किपू
1: नेवा सभ्यता या जीवन तब खुला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसा जासानी
2: प्रभाग कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज नेवा FM 106.6

0: Television. बैंक गुब्ले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी कालादासा ठिका दिसा व छित ठगे या त सनाचो मुदो नाप बैंक कर्मचारी जुगु दाबी याम हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिस उमेको विवरण कया बैंक जना दिस सतर्क जुया दिस ठगी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

जिगिथो नापाङको सख जी सरस्वती मानन्द थुगेले भाषा साहित्य हो संस्कृति नेवा एफएम सचिव खुफुदी खु नेना दिसा नेङ्गा दिसा जी ने

नेपाया गौरव नेवा मसिका नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिशा नेङ्गा दिशा।

केवाईसी विवरण अध्यावधिक यागु बारे तस्क हथ्यागु सुच हनिबहपी ग्राहक पी बैंकिङ कारोबार या त सुरक्षित व्यवस्थित व प्रभावकारी या त थगु केवाईसी अर्थात ग्राहक पहिचान विवरण अध्यावधिक या त इनाब्दु नाप छिगु ना थाबा मोबाइल नम्बर लजगा बनेज्या छिज विवरण व अन्य व्यक्तिगत विवरणे ह्युपा वगु दुसा थ या त छि था कृषि विकास बैंकिया न्यागुन शाखा वना इलेहे जानकारी बिया केवाईसी अध्यावधिक या त इनाप्याना कृषि विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय रामसाहा पथ ये।

या केवाईसी विवरण अध्यावधिक यागु बारे तस्क हथ्यागु सुच हनिबहपि ग्राहक पि बैंकिङ कारोबार या त सुरक्षित व्यवस्थित व प्रभावकारी या त थगु केवाईसी अर्थात ग्राहक पहिचान विवरण अध्यावधिक या त इनाब्दु नाप छिगु ना थाबा मोबाइल नम्बर लजगा बनेज्या छिज विवरण व अन्य व्यक्तिगत विवरणे ह्युपा वगु दुसा थ या त छि था कृषि विकास बैंकिया न्यागुन शाखा वना इलेहे जानकारी बिया केवाईसी अध्यावधिक या त इनापियाना कृषि विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय रामसाहा पथ ये।

0: कृषि विकास बैंक लिमिटेड या केवाईसी विवरण अध्यावधिक यागु बारे दशक हथ्यागु सूचना हनिबहपी ग्राहक पी बैंकिंग कारोबार या त सुरक्षित व्यवस्थित व प्रभावकारी या त थगु केवाईसी अर्थात ग्राहक पहिचान विवरण अध्यावधिक या त इनाब्दु नाप छिगु ना थाबा मोबाइल नम्बर लजगा बनेज्या छिज विवरण व अन्य व्यक्तिगत विवरण ह्युपा वगु दुसा थ या त छी था कृषि विकास बैंक या न्यागुन शाखा वना इलेहे जानकारी बिया केवाईसी अध्यावधिक या त इनाप्याना कृषि विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय राम शाहपथ ये
1: थोखर भाषा साहित्य व संस्कृति या नेवा एफएम 106.6

0: पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इंश्योरेंस, जीवन को लागी।
2: जथाभावी रुख नकाटौं, वन जंगल हरियाली जोगाऊ, टोल बस्ती वातावरण सफा राखौं, पर्यावरण बचाऊ, रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं, कीर्तिपुर चार ओडाको चम्पा देवी दर्शन गरौं, सधैं सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौं। कीर्तिपुर नगरपालिका चार ओडा कार्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ।

जोजलपा जी गायक जुजुकाजी रञ्जित, नेपाल भाषा एकाडेमी या नीति अनक मिडिया या नेभोया, भाषा साहित्य व संस्कृति सह नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो, न्याना दिसन, न्याङ्का दिसन, शुभ।

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति महसिकेट नेवा नशा तो सया सत्ता सभा ख्यात
0: नेवा लहना रेस्टुरेंट खा बहा किपू
1: नेवा सभ्यताया जीवंत व खुला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य रुसाजा सानी
2: सडक गेमको पालना गरौँ

जी सकल शगु मंका स नेवा स नेवा एफएम सच्छो खुप्टी खुब मेगा हर्जा ज्याजले लस्कु सेना जना थौ नेपाल सम्बत छिन छ सवो पी खुद योङ लागा चतुर्दशी ध्याबले मंगल चतुर्दशी यो दिन ख थौ थौ या दिन सकल स्या भिजीमा धासे प्राविधिक कठन ग्वाल नान्दी युनिक साके नाप ज्याजन हाका मेजी कमला थौया लोकौ हागु।

जाजो नेनी गुनी ती वा पट्टी का छिन्नी ता इंछी छटा इटा कठी थी महला में पिंगु सले यही पिशी चंगु लोको हागु मेनिंग के गुनी ती छगव टकल नचना जाजो नेना जाजो या सवा के दी धैगु भला सकासे जाजो या दक्लिन हपांगु में छपु दे छाते ना थौ गणेश चतुर्दशी चतुर्दशी मंगल चौथी धैगु दिया त कया जुगल डङ्गल नेनादिस ठाउँ या ज्याजो या डक्लिन हापाङ्गु मि लेताजी अति छङ्गु।

ती बुझोले आफ्नो छपु मे डेचना चुना ठुकु मे ख धारे दैसा धेकु मे ठुकु मे चन्देश्वर महर्जन या चोस्या बाजाङ गोसा गोयाटे हरिशरण स्यामी सतीश महर्जन हो निशा डेसा ऱ्यासले ठुकु न्याय पुगो लोकौ आगु जो मे डेचना चुना।

जोजलपा जिम्यालामी पूर्णमान महर्जन छिसङ नेना चना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिस नेङ्का जिस नेवा जुयागु गर्व याना जिस।

띠의 니부빙, 우띠꺼의 예부빙, 시끄시끈 일마빙, 떠스꺼 나스널류빙, मदन कृष्णीय लागि सदा सदा हनिभपी अहिले मदन कृष्णीय दुःख सुखय खन ह्याबले कनिभपी दाजु किजा ततके कक काकी थोम्बा थोमा बाज बजे आजु अजी पासपी पासबा पी वा पासमा पी सकृष्ण भाग्याती भाग्य भने जीव मदन कृष्ण तगा तैरियो ख लगिछो ख एस जे जीमा सकृष्या जे जीमा छिक्पी सकृष्ण मर्गुने जन यक्कु यक्कु रथेयामा रथेयामा मुखो छिक्पी गब्ले ठेक मर्गुने जो चाची यो च्याबले गुने जो गजु ठेक्क सुकुपटी जी हाल्त यो मेत हो जिउ खाल्लु मसे वेमा परमेश्वर छिक्पी सकिता